0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समी चो चौदह क्या में बहुत लोटी पड़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिख खाई हमरो खाई खाई बहु कोई लोटर भर दिल
2: आई समी जो लोटी पड़ी हूँ छाता ही गुदी
1: भर दी आ भर दी लोटर खाली पड़ दी बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिस्या खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्या रे जन हेजरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरी लाई
3: दीदी किन हो यो छिमेकीले त सधैं झगडा कुटपिट मात्र हुन्छ कतै उजुरी दिने कि
4: हो हिंसा सहनु हुन्न हामी सबै मिलेर यस्तो विभेद रोक्नु पर्छ
3: हिंसा सहेर नबसौ विभेद मुक्त समाज निर्माणमा जुटौ
4: जुनसुकै प्रकारका शारीरिक वा मानसिक हिंसा कानून त दण्डनीय छ लैङ्गिक हिंसा भएको देखेमा वा भोग्नु परेमा तत्काल आवाज उठाउँ र कानूनी उपचार खोजौं
0: सम्बन्ध सधैँभरिलाई
3: दिदी किन हो यो छिमेकीले त सधैँ झगडा कुटपिट मात्रै हुन्छ कतै उजुरी दिने कि
4: हो हिंसा

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 8 बजे हो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।
1: यो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
2: अहिले बिहानको ठीक 10 बजे

0: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाँझिमरी बुझिमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ्क खुन्जु भन्दा उइसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिग वेबसाइट ना यूआरएल चेक लना आक्षेपा घटना तल आफै लागि समय समयरी आफैन पासपोर्ट फेरदिल परेम नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.5

0: अनि तयो कागज के मे थि वा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनियो टेलिकमर बे अफिस तरी आइर ब्लक लै र खलखाई अनि बैंगरी बैंगरी अ चर चाहिँ तले लगपर्दि सम्नल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिल परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी न
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्नको ठीक 3 बज्यो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

attacca. World Cup 2026 कमर्स सीसीटीवी ले आए को सा 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 समय को कैशबैक सजिलो 0% ईएमआई को सुविधा नागरिकता भाई पुक्सा World Cup to World Cup सीसीटीवी खेल संगे भरोसा संगे परदेश

0: अब विदेश पठाएको पैसा सीधे खल्ती वालेट में
1: नेपाल को कुनै पनि बैंक खाता में वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफन्तको हाथ हाथ में पुर्याउन आईएमई गरौं।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास आईएमई गरौं।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: समीच हो चौदह के बोधे लोटी पर्दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिल
2: आगे समीच लोटरी पर्दी हूँ छाता ही गुदी
1: बर्दी आ बर्दी बल लोटरी खाली पर्दी बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।

0: के पासवर्ड पिन खैमै आरी सुमी बैंक आफै भने आरी
1: सतर्कता
2: सिद्धार्थ ब्यागर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश।

0: केसिड तथा टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, मलेरिया, निसंतान तथा बाजोफोन को परीक्षण, रगत, पिशाब एवं ब्रीय परीक्षण।
1: 24 घंटा आकस्मिक सेवा।
2: सम्पर्क बागलुङ मेडिकल हल तथा सिटी फार्मेसी,
0: बडगाउँ चौर कुस्मा पर्वत। फोन नम्बर 0674220027, 0674220027।
1: मोबाइल नम्बर 98577225597, 98577225597,
0: 98511898918।
1: स्थान बागलुङ मेडिकल हल, स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक,
0: बडगाउँ चौर कुस्मा, नयाँ भवन पहिलाको स्थान भन्दा 100 मिटर अगाडि।
3: अनि तयो कागज के मेथी वा अिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैवधि पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई। अनि बैंगरी बैंगरी चर्चै तले ललपर्दी सङ्गलपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिया बधेर ब्लक तयाइ दिशा आफै न ब्याङ्क देवनी जानकारी तिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल पर्यम
4: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
5: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
7: जसको नाम नै पर्याप्त छ
8: दिदी बहिनी,
7: दिदी बहिनी,
8: दिदी बहिनी,
7: रेडियो दिदी बहिनी, हामी गर्न सक्छौ,
8: हामी
7: गर्न सक्छौ,
8: गर्न सक्छौ।

0: बीमा को लाभ दी आप कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ।
1: प्राविधिक शिक्षा पढ़ने सुबन अवसर पुनः प्रवेश परीक्षा 2083 सम्बन्धी सूचना एसए 2082 पूरक परीक्षाबाट न्यूनतम 2 GPA अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सीटीबीटीबाट सम्बोधन प्राप्त यस धौलागिरी प्राविधिक शिक्षा
0: प्रतिष्ठानको लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आजै बनौ सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जियौं।